जे मुहका कर मुह पितरी दे अगे वस्त सजानी है पितरी चोर करे वड़ी है हथ दलाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले।

ओड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है। देखे कि तो अपना दर कची पक्की सारी है, जो आया सो चलसी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है के उस

पौड़ी जिसे वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। जिद किता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा मूल ना की चाहिए लम्मी लद निहालिए। जो साहिब नाल ना हारिए ते वे हा पासा ढालिए। किशला हे उपर घालिए किशला हे उपर घालिए। जिन गुरमुख ना

आप गवाए सेवा करे ताक पाए मान, नानक जिसनो लगा तिसमे लै लगा, सो प्रवान महला दूजा, जो जी होए सो उगवै मौका कहया वाओ, बीजै बेख मंगे अमृत, देखो इहो

औड़ी नानक अंत न जापनी हरता के भरावार, आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां तुरी चरे बसया, आप कराए करे अब हों कैसे हो करी पुकार।

तुर छोड़ीत न पाए, नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए। सो करे जित सिर जाए, सो करे जित

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रीख पीख को कह न सकत किह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राणि साहि साहाणि गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत सेव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लेव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तू हि जस बकता कोल सोढ़ी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता नानक सावण जी वसै चहो ओ माहा होई नागा मिर्गा मच्छिया रसिया कर तन होई नानक सावण जी वसै चहो विछोड़ा होई गाई पुत्ता निरतना पंथी चाकर होई नानक बिजुलिया चमकन कुरन कटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदिया जल थल नीर परी शीतल पवन चुलार दे सेजड़िया सोइन हीरे लाल जड़ंदिया सुभर कपड़ भोग नानक पिरी विहूणी तत्तिया ऊनव ऊनव आया वरसै लाए चढ़ी नानक भाण चल कंत कै
सुमान सदा रली। क्या उठ उठ देखो बपड़ी, इस मेघे हाथ किश नाहि। जिन एहो मेघ पठाया,

प्रिया अहनेस सहज सुभाय, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु, जिस

जाइय तेरा अंत न पारावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर वेख जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड़ भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मन हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਾ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवे तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ट दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जीते उठवाती उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सके न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन

दोष्ट दोख तिल हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओम राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने। ओम सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जाने। ओम श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब।

दियास गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित

छोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते रामैया हों बारिक तेरा काहे न खंडस अवगण मेरा जे अत करोप करे कर ताया ता पी चीतना राखस माया चिंत पवन मन परियो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवे कबीरा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो दर्शन प्यासी दिन सुरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुकह टल गुर सेविए एहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसाहु सजन सचा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज।

जी की फतेह। सिर मस्त कर रखिया पार, ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चन रखिया जगदीसरै, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथे। सर नानक पुरख अचुत है, बिलावल महला पंजवा। ताती वन लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई, राम नाम औख दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याध मिटाई, कहो नान कृपा पई। प्रभु पे सहाई सोहिलारा, गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, जयकर कीर्ता खिया करते का होए विचारो। हित कर गावो सोहिला, सिवर हो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भउ का सोहिला, हो बारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े समाज ने देखेगा देवनहार, तेरे दाना कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सजना सीसड़िया जो होवै साहब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरी है नानक से दया बन। रागासा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जयकर करते कीर्त होए, सो कर राख बड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चस्या घड़िया पहरा, थिती वारी माहो हुआ। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रव चंद, दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चावरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खन्ना, तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पाद बिमल नन एक पाद, गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत सुभाव है सो आरती होए। हर चरण कावल मकरंद, लोहत मनोअंद नो मोहयाही प्यासा। कृपा जल दे नानक, सारंग होए जाते तेरे नाए बासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर वरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पन बड़ा है, कर डौत पन बड़ा है रहाओ। साकत हर रस साधना जाने, अंत नंतर हो मैं कंडा है।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ।

आशा मोहल्ला पहला वार्ड स्लोकाना सोगी मोहल्ले पहले के लिखे कुंडे असराजे की तुनी श्लोक मोहल्ला पहला बड़े हारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवार जनमानसते देखते किए करत न लगी वार मोहल्ला दूजा जे सौ चंदा उगवे।

0: श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खन, सच्चे ब्रह्मन, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदे आखे लख करोड़, सच्चे सब तान, सच्चे सब जो, सच्ची तेरी शिव सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच।
1: महला दूजा ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्म करे विनास, एक ना भाने कढ ले, एक ना माया विच निवास, जा पई जे सियाने रास, नानक गुरमुख जानी है जाको।

गहने पौन पानी बैसंत चंद सूरज बता सगली धरती माल तन वरतू सर्ब जंजा नानक मूसे ज्ञान भी होनी खाए गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गुर पैर हलान फेरन सिर उड़ उड़रावा झाटे पाए वेखे लोग कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे तालाब छड़े धरती नार गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपन निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी निरंजना मंचाओ सिक्खी सिक्ख्या गुरु बिचाओ।

मुसलमान सुबह सर पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जपे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह ही सलाहन दर्श रूप पार तीर्थ ना वेरचा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन त्यामन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम जिन काया काया कार सतिया मन सुन तो उपजे देने के विचार दे दे मंगे से सौ गुना सौ करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाचले था हो तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहा आकार आया कार रोज जाके सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता पुख सलाह सच नाम आधार सदा नंद।

0: महला पहला पड़ पड़ गड्डी लजिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक देखे कि गद होर हो में चखना चा
1: महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ भविया ते तो लव्या बहु भेख किया देही दुख दिया सहोवे जिया अपना किया।

0: अनमल खाई सिरछाई पाई मूर्खन दे पत गुवाई विणनावे की थाए ना पाई रह बेबाड़ी मरी मसानिया दना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तेने केवल
1: मैं जब दे जलाए पौड़ी भगत।

बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ भी बिखा पोहे खार कूड़ कूड़ ने हो लगा।

पौड़ी दान मेंडा तली खाक जय मिले ता मस्त कलाई है। कूड़ा लालच छड़िया हो एक मन लख ते आई है। फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वे पूर्व लिख्या ता तूर दना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

0: है घर बार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
1: कदी सुबह जुग नानका सच्चा।

0: बे बदा जर रहे जर बिन गुम ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुणगा
0: आयो मी साधु नमारिये जा काले कालना ते वे हो
1: ना उपचारिये।

कलयुग राखी पात अगन देखत गात चरण कवल जास सबिद मान्यो मान तब ही पयो परसान राज जोग तखत दियन गुर राम।

0: सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो।
1: सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासर एक समान त्यान। सो नाम सुने सुत पांडरयो, पन दास सुहास जगत रे। गुरु की पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो। सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो।
0: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाख पारे कर आज, फुंद्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोसाज, सोदामा अपदा ते राखिया। गनका परत पुरे तह काज, श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए। राखो दास पाठ की लाज।
2: चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जप नाम नव नित अप। रसन अह निस रस सत कर जानियो, फुन प्रेम रंग पाइया गुरमुख त्याइया। अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रिद तरो पंच भू बस करो। जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो, जो ता सब सुख इत उत तुम वंश हो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।
3: गुरु गुर गुरु जप सतकार। अगम गुण जान निधान हर मन तरो, ध्यान अहनिस करो बचन गुर हृदय धार। हुन गुरु जल बिमल था मजन करो, संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निर्भौ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो। गुरु गुर गुरु जप सत कर।
2: गुरु गुर करो गुरु हर पाइए, उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर। नाम नगहीन मन मिलतली वलाइए, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस। मैल दुरमत हिरत सबद गुर त्याइए, अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार। जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए, नाम निर्वाण निदान हर उरतर हो। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।
4: गुरु कर गुरु कर गुरु जप मन रे, जाके सेव सिद्ध साधक असुर कन तरे। ते तेस गुर बचन सुन कन रे, फुन तर ते संत हित भगत गुर गुर करे। तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे, तरे नारदाद सनकाद हर गुरमुखे तरे। एक नाम लग तजो रस अन रे, दास बेनत कहे नाम गुरमुख लहे। गुरु गुर गुरु जप मन रे।
5: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे, अनभौ नेजा नाम टेक ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ।
6: ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ।

सुखहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसोहु कुरसोहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदै शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहु सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदै शाह जिस पास बैठिया